अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: सिद्धार्थ धाम की
1: जय।
0: श्री ओम महारानी की
1: जय।
0: जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गो माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सहस्त्रों यत्नशील मनुजों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है, वह उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्री भगवान अपनी समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का विवेचन करते हैं, वह स्वयं को प्रकृति के गुणों से परे त्रिगुण परम कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं,

हे भरतऋषभ, दुष्ट, नराधम, मूढ़, असुर व माया के वश में अज्ञानी कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। इसके विपरीत मुझे आर्त, जिज्ञासु, अर्थ अर्थी व ज्ञानी पुरुष भजते हैं। इन सब में मुझको ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है।

श्री भगवान कहते हैं कि विभिन्न देवताओं में उपासकों की श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ। देव पूजक देवों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। मुझ अजन्मे अविनाशी को व्यक्ति भाव में जानने वाले मूढ़ व अज्ञानी हैं। श्री गोविंद के शब्दों में

बाल कृष्ण के प्रेत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध-बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी गीत हमारी।

मैं पुराण पुरुष पुण्य सलिला गोमती का अभिनंदन करता हूँ। गोमती अथवा धेनुमती नाम से ही इसकी महिमा का बखान किया जाता है।

0: निकट की नदी भी गोमती कही जाती है। पवित्र जल वाली गोमती प्रणाम।
1: ये किसने मुझे स्मरण किया है? किसने जल तरंगों के तार झंकार दिए हैं? हाँ, मैं गोमती हूँ। मेरा जन्म हिमालय से नहीं, हिमालय की तलहटी में पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में हुआ। मनियाकोट मेरा मायका है और माधोटांडा कस्बे की फुलहर झील मेरी माँ है।
0: इस उद्गम के लिए कहा जाता है कि एक सिद्ध संत की आस्था का वरदान है गोमती।
2: स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक श्लोक में जिन नदियों को पुण्य सलिला, पवित्र जलवाली और शुभ माना गया है, उनमें एक है गोमती।
3: श्री अनिल स्वरूप, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने बताया।
2: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जिला गजेटियर के अनुसार जिले की नदियां अनेक विशिष्ट प्रणालियों की हैं। जिले के उत्तर की भूमि की संकीर्ण पट्टी का जल निकास होता है शारदा नदी में। पूरनपुर परगने के मध्यवर्ती भाग से बहुत सारे सोते फूटते हैं जो मिलकर बन जाते हैं गोमती।
0: मनियाकोट के आसपास कई जल स्रोत मिलकर एक होते हैं जो वास्तव में भाबर क्षेत्र के पथरीले इलाके के नीचे नीचे से आते हैं। ये अनेक शिराएं मिलकर बनाती हैं एक जलधारा, एक जीवन धारा। हमारी संस्कृति में जल को जीवन कहा गया है।
1: जनमानस से प्रवाहित होकर जब मैं चलने लगती हूँ तो मेरे संग की सहेलियां मुझसे मिलती हैं। दूर तक मैं उत्तर से दक्षिण की ओर भागती हूँ और फिर प्रवेश करती हूँ शाहजहांपुर जनपद में।
0: इसी जनपद से गोमती का रूप निखरता है। ये सोया सोया पानी जब जाग कर आगे चलता है, बढ़ता है, तो समाज के संस्कारी उपवनों को सींचता जाता है। रुहेलखंड में अपना बचपन बिताकर 67 किलोमीटर की यात्रा करके गोमती एक अल्हड़ किशोरी बनकर अवधांचल की सीमा में पांव रखती है।
1: परगना मोहम्मदी और पास गांवों के बगल से निकलते हुए मैं लखीमपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक 152 किलोमीटर लंबा सफर तय करती हूँ। तराई के हरे भरे जंगलों की परछाइयाँ समेटते हुए, वन पक्षियों का कलरव सुनते हुए मैं बहती रहती हूँ।
0: गोमती एक नव यौवना की भांति इठलाती हुई चलती है। खीरी जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के दक्षिण से होती हुई हरदोई जनपद में कदम रखती है। यहां से ये हरदोई सीतापुर जिलों की सीमा रेखा बनकर बहती है। यहां मिश्रित तहसील में बाईं ओर से आकर कठिना नदी इसे अपना अर्घ्य देती है। कठिना नदी शाहजहांपुर जिले की मोती झील से निकलकर आती है। अब आता है गोमती का पहला पड़ाव, नैमिषारण्य तीर्थ।
4: पृथिव्याम यानी तीर्थानी तानी तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में है।
3: नैमिषारण्य के जगदाचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने बताया,
4: सतयुग का ये महान तीर्थ इसलिए अद्वितीय कहा गया है कि यहाँ सतयुग में 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक ज्ञान किया है। पांडवों ने 12 वर्ष यहाँ तपस्या की है।
1: सतयुग से ही इस साधना स्थल आध्यात्मिक पीठ से सद्ज्ञान का प्रसारण होता रहा है।

यहां सूत जी के श्रीमुख से मुनियों ने भगवत कथा का श्रवण किया था। यहीं पर वेदव्यास द्वारा वेद विभाजन किया गया और हुई 18 पुराणों की रचना।

0: गोमती हरदोई जिले की सीमा रेखा बनकर हत्याहरण तीर्थ के निकट से होती हुई जब लखनऊ जिले की ओर आने लगती है तो इसके बाएं तट पर सरायन नदी गले मिलती है।
1: सरायन को साथ लेकर मैं आती हूँ लखनऊ जनपद में। महोना मलिहाबाद परगने के बीच से होती हुई मैं बसहरी घाट पर लासा देवी के ऊंचे मंदिर के नीचे से निकलकर बख्शी का तालाब कठवारा की चंद्रिका देवी के पांव धोती हूँ। यहाँ आसपास आमों के बाग हैं। आम्र मंजरी का मादक सौरभ बसंत ऋतु में मेरे तटों पर पसरे आंचल को सुवासित करता है। गर्मियों के मौसम में मेरे दोनों किनारों पर सुनहरे लखनऊवा खरबूजे पुखराज की तरह बिखर जाते हैं।
2: उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर कि आम की बहुत सी किस्में उगाई जाती हैं।
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश ने जानकारी दी।
2: लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजरी ये किस्में जो हैं प्रदेश की मुख्य किस्में हैं। विशेष करके दशहरी का जो मातृवृक्ष है वो करीब 200 साल से पुराना है। वो अब भी जीवित है दशहरी गांव में और उसमें काफ़ी अच्छी फलत आती है। किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने जो पहली फल पट्टी आम पट्टी घोषित किया वो काकोरी, मलिहाबाद और माल की फल पट्टी है। और गोमती नदी के आसपास जितने और शहर पड़ते हैं वहाँ पर भी आम की खेती बहुत अच्छी की जाती है।
0: अब रानी मऊरेथा के बीच होती हुई गोमती मूसाबाग और छैला गांव से होकर आती है गौ घाट पर। अब आ गया लखनऊ, कोसल जनपद का पश्चिमी दुर्ग द्वार लक्ष्मणपुर, जिसने पौराणिक काल देखे, महाजनपदीय युग देखे, फिर राजपूत साम्राज्य के बाद भरों रजवासियों की राजधानी बनी लखनावती। लखनावती को छोटी काशी और गोमती को आदि गंगा भी कहा जाता है। आज भी गोमती लखनऊ के लक्ष्मण टीले का पद प्रक्षालन कर रही है। शेखजादों का लखनऊ, नवाबों का प्यारा लखनऊ और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मैंने इसे बहुत निकट से देखा है। मुगलकालीन नवाबों के चढ़ते उतरते वैभव को और गोमती के दाएं तट पर मच्छी भवन किले को बनते देखा, फिर सन 57 के स्वाधीनता संग्राम में उजड़ते भी देखा। लखनऊ के पक्के पुल से डूबते हुए सूरज को देखिए तो आपको एहसास होगा कि लखनऊ की शाम को लोग शामे अवध क्यों कहते हैं।
4: गोमती का जो महत्व है उसके बारे में ना तो इतिहासकारों ने कोई विशेष ध्यान दिया है और ना साधारण लोगों ने।
3: इतिहास वेता डॉक्टर सुधींद्र नाथ कानून गो का मानना है।
4: हम लोग तो जैसे मैंने गंगा जमुना संस्कृति की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे विचार में हम लोग उसको गंगा गोमती तहजीब या गंगा गोमती संस्कृति क्यों नहीं कहेंगे। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा कि अवध जर्नल में 1971 में प्रोफेसर मुनीस रजा ने एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक लेख लिखी, डिलिमिटिंग अवध सुबा। उस अवध सुबा में सिर्फ गंगा जमुना के महत्व के बारे में नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने गोमती का भी अपना महत्व के बारे में उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला है। ये जो गंगा गोमती संस्कृति के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसको केवल एक कॉम्पोजिट कल्चर या के दृष्टिकोण से तो आलोचना तो करना तो चाहिए।

इसी नैमिषारण्य में सम्राट मनु और शतरूपा ने परमेश्वर को पुत्र रूप में पाने के लिए गोमती तट

0: चाहिए, लेकिन इसका आधार केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में जो संबंध है वो नहीं है। इस कॉम्पोजिट कल्चर यानी गंगा गोमती संस्कृति का तो आधार जो है उसका नीम प्राचीन भारत में डाली गई। इसी गोमती के किनारे कितने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे बाग बनाए गए हैं और उस बागों के साथ हमारे इतिहास जुड़े हुए हैं, चाहे सिकंदर बाग हो चाहे दूसरी चीज हो। और फिर मैं फिर से यही कहूँगा, 1857 के क्रांति के पहले रसल साहब जो टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट वो आए थे लखनऊ में, तब लखनऊ के बारे में वही गोमती किनारे पे खड़े होके लखनऊ के जो इतनी सुंदर दृश्य देख के उन्होंने बताया कि इस तरह का शहर जो है ना तो इसकी तुलना ना तो रोम के साथ तुलना की जा सकती है ना कॉन्स्टेंटिनोपल के।
1: लखनऊ में मेरे घाटों पर जब तब भीड़ उमड़ कर आती है। दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए, चेटीचंड में वरुण पूजा के लिए या शहीद स्मारक पर दीपदान के लिए। सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा का मेला पूरे अघन मास चलता रहता है। लखनऊ के कुछ घाटों पर आप मंदिरों में मुझे मूर्तिमान भी देख सकते हैं। अगर आप मेरी 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा देखना चाहें तो इसी जनपद के डिगोई ग्राम में देख सकते हैं। मेरे पानी में आई अपार बाढ़ ने लखनऊ नगर के कुछ हिस्सों को कई बार नहला दिया है। सन 1915 और 1923 की भीषण बाढ़ लोगों को भूली नहीं होगी, पर 1960 में तो हजरत गंज में नावें चलने लगी। कभी मेरे जल की स्वच्छता एवं पवित्रता के कारण मुझे आदि गंगा कहा जाता था। आज आबादी के दबाव, औद्योगिकरण तथा लापरवाही ने मुझे गंदे पानी का दरिया बना डाला है।
2: गोमती नदी पीलीभीत जनपद के माधो टांडा गांव से निकलकर लगभग 940 किलोमीटर की यात्रा तय करके गाजीपुर जनपद में ओडियार गांव में जाके गंगा नदी में मिलती है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के 8 जनपदों से होकर ये नदी गुजरती है। इस नदी में जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई स्थानों पर किया जाता रहा है।
0: श्री प्रदीप कुमार, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सचिव पर्यावरण उत्तर प्रदेश ने बताया,
2: इस अनुश्रवण से ये स्थिति सामने आई है कि कई स्थानों पर जो निर्धारित मानक हैं उनसे जल की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। विशेष रूप से जहाँ तक लखनऊ का प्रश्न है, जो बैराज है उसके अपस्ट्रीम में जितना पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होनी चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही जो प्रदूषण का स्तर है जिसको BOD के रूप में नापा जाता है, तो BOD का स्तर भी अपस्ट्रीम ऑफ बैराज में निर्धारित मानकों की अपेक्षा काफ़ी अधिक पाया गया है। ये जो गोमती नदी में प्रदूषण है ये मुख्य रूप से दो कारणों से है। पहला तो ये कि गोमती और इसकी सहायक नदियों के किनारे करीब 18 औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जो अपना औद्योगिक कचरा गोमती नदी में प्रवाहित करती हैं। इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं और 18 इकाइयों में से 14 इकाइयों में तो संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। 2 इकाइयों के बंदी के आदेश जारी किए गए हैं शासन द्वारा और बाकी 2 इकाइयों में संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो प्रदूषण गोमती में आज हो रहा है उसका कारण ये है कि लखनऊ शहर और बाकी जो शहर हैं उनका सीवेज और बाकी शहर का जो कचरा होता है वो बिना शुद्धिकरण किए गोमती और सहायक नदियों में डाला जा रहा है। जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार ये स्थिति निकल के आई है कि लखनऊ में शहर का जो सीवेज है उसकी मात्रा लगभग 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है और 50 टन BOD लोड प्रतिदिन नदी में सीवेज द्वारा डाला जा रहा है। इसके विपरीत जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा लगभग 2.5 टन प्रतिदिन बीओडी लोड नदी में डाला जाता है। तो इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षा शहर का सीवेज शुद्धिकरण ना हो पाने के कारण 25 गुना बीओडी लोड नदी में प्रवाहित हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इसके बारे में शासन क्या कर रहा है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गंगा एक्शन प्लान का द्वितीय चरण क्रियान्वित होने वाला है, जिसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है, और इसके अंतर्गत जो गोमती नदी है उसके किनारे स्थित 3 शहर जिनमें लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर हैं, उनमें शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। नालों में जो पानी जाता है, जो बाद में नदी में जाके मिलते हैं, उनमें पानी डाइवर्ट करके सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
1: लखनऊ जनपद में अखंडी मंझावा गांव में, झिलंगी गोपरा मऊ में और बेता कांकराबाद में मेरे दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। कुकरायल ही यहां बाएं तट पर मुझसे संगम करती है। लखनऊ के पिपरिया घाट के बाद से शहर मुझसे दूर हो जाता है और मोहनलालगंज के सिकंदरपुर खुर्द के आगे लखनऊ जनपद भी मुझसे छूट जाता है। यही गस्कर में रेठ और सलेमपुर में लोनी नदी मुझ में मिल जाती हैं। अब आता है बाराबंकी जिले का दक्षिण भूभाग। यहाँ हैदरगढ़ के निकट से मैं गुजरती हूँ और इसी जिले में आकर मुझसे गले मिलती है कल्याणी नदी। उत्तर पश्चिम दिशा से मेरा प्रवेश सुल्तानपुर जिले में होता है। यहाँ उत्तर में मीरनपुर और दक्षिण में बरौंसा है। पासी है जगदीशपुर की नए औद्योगिक विकास से जगमगाती धरती। इसी सुल्तानपुर शहर के बीच मैं चुपचाप निकल जाती हूँ सीता कुंड तीर्थ से। त्रेता युग में भरत जी चरण पादुका लेकर इसी मार्ग से अयोध्या लौटे थे।

0: इसके बाद मिलता है पांचों मीरन का गांव और उनके मजार। अब अल्देबाऊ और चांदा के बीच होकर पपड़िया घाट के बाद आता है धौत पाप तीर्थ। इस स्थान पर अल्देमऊ नूरपुर परगने में मेरे तट पर सतई बाबा का प्रसिद्ध मठ है, जहां मेला लगता है। खुदाई में बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। भरों का राज सदियों से रहा है। शेरशाह के दो किले भी हैं। यही चांदीपुर में कंदूना लाकर मिलता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की तरफ चलकर सिगरामऊ से जिला प्रतापगढ़ को छूकर मैं जौनपुर की मेहमान बनती हूँ।
1: मेरे जहन में इस वक्त एक अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात याद आ रही है। एक बार उन्होंने कहा था कि गोमती एक अत्यंत सुंदर नदी है, और उन्होंने गोमती को गोमती ना कहकर गोमती नदी कहा था। और उसी मनमोहनी गोमती नदी के किनारे ये जौनपुर का शहर बसाया गया था।
2: इतिहासविद डॉक्टर प्रदीप कुमार घोष ने कहा,
1: इस जौनपुर शहर में मध्यकालीन भारत का अतीत सोया पड़ा हुआ है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार जौनपुर का प्राचीन नाम जमदग्निपुर था, जो कि ऋषि जमदग्नि के नाम से रखा गया था। किंवदंतियों के अनुसार एक कथा और प्रचलित है कि रामचंद्र जी ने किरारावीर नाम के एक दैत्य को उसके अत्याचारों के कारण उसका दमन करने आए थे, और उसको दमन करके उसके धड़ को वहीं छोड़ दिया था। और उसी स्थान पर उन किरारावीर के अनुयायियों ने एक मंदिर बनाया उसके नाम को अमर करने के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि उस स्थान का नाम बाद में जौनपुर पड़ा। लेकिन अय्या बिन अहमद ने अपने तारीख मुबारक शाही में लिखा है कि फिरोज तुगलक जब अपने बंगाल अभियान के लिए जा रहे थे
2: जी।
1: तो रास्ते में अत्यधिक वर्षा के कारण उन्हें एक जफराबाद नामक स्थान पर रुकना पड़ा, और वहीं से उन्होंने दूर गोमती को बहते हुए देखा। उस लुहावनी मनमोहनी दृश्य को देखकर उनके मन में आया

0: यहाँ पे एक शहर बसाया जाए। और साथ में दक्षब उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद उनके दिमाग में था
1: जी
0: कि उन्होंने सोचा कि उस जगह को, उस नए शहर को उनके बंगाल अभियान के लिए एक फोकल पॉइंट बनाया जाए।
2: सन 1567 में मुगल सम्राट अकबर जौनपुर पधारे तो उन्होंने देखा मेरे किनारे एक औरत खड़ी रो रही है।
3: अरे नदी के सुनसान किनारे पर खड़ी तुम किस लिए रो रही हो?
4: जहां पना, मैं एक गरीब विधवा औरत हूं। मैं चरखे पर सूत काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं सूत बेचने दरिया पार आई थी, लेकिन अब लौटते वक्त यहाँ कोई नाव नहीं है, अंधेरा होने को है। उधर मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते करते थक जाएंगे और भूखे ही सो जाएंगे।
3: आए नेक खातून, मुझे तुम्हारे दुख की दास्तान सुनकर बेहद रंज हुआ है। मुनीम खानखाना
5: जी, बंदा परवर,
3: यहाँ पर एक पुल तामीर होना चाहिए।
5: महाबली, आपका हुक्म सर आंखों पर।
6: ₹30 लाख की लागत से तैयार हुआ जौनपुर का शाही पुल। खूबसूरत छतरियों वाला ये गोमती का पुल विश्व का पहला लेवल ब्रिज है। इसी की नकल पर सन 1810 में लंदन शहर का वाटरलू लेवल ब्रिज बनाया गया।
1: जौनपुर में जो एक कॉम्पोजिट कल्चर के जो उद्भव है उसके पीछे कोई कम्युनल टेंशन इस तरह के कोई बात नहीं थी। वो तो लोदी सुल्तान और जौनपुर सुल्तानों के बीच में आपस में जो झगड़ा था माने उसी का एक नमूना है।
7: डॉक्टर सुधींद्रनाथ कानून गो के अनुसार
1: जौनपुर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो गंगा गोमती संस्कृति के एक अपूर्व झलक आपको मिलेगी। शारकी सुल्तान नगर तो मुसलमान जरूर थे वहाँ पर, चाहे इब्राहिम शर्की हो चाहे हुसैन शाह शर्की हो। मैं शायद आपने गौर किया जो सबसे प्रमुख मस्जिद है जौनपुर में उसका नाम है अटल्ला देवी मस्जिद। अब ये अटल्ला देवी मस्जिद अभी भी मुसलमान लोग भी कहते हैं। अच्छा, उसके जो मेन आर्किटेक्ट है वो एक हिंदू था। एक दूसरे मस्जिद जामी मस्जिद, उसका भी महत्व कम नहीं है। उसका भी जो आर्किटेक्ट है वो भी एक हिंदू, उसका नाम दिया हुआ है कमों विषाद्रु। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया कहा जाता था। कहने का मतलब यही है कि जौनपुर और लखनऊ ये जो दो प्रमुख शहर गोमती के किनारे बसे हुए हैं, ये केवल एक शहर नहीं एक संस्कृति के भी प्रतीक है।
6: गोमती जौनपुर की झंझरी मस्जिद को अपने दाएं तट पर छोड़कर आती है कागज के इस छोटे शहर में जिसका नाम था जमैथा। यहां महर्षि जमदग्नि रेणुका और परशुराम जी का आश्रम रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे शहरे अनवार का नाम दिया था। यहां फकीरों के कई मजार होने के कारण इसको जनता पीरन शहर भी कहती रही। बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जफर के नाम से इसे नाम मिला जफराबाद।
2: जौनपुर के आगे लगभग 29 किलोमीटर पूर्व तिरमुहानी पर सई नदी मेरे दाएं तट पर आकर मिलती है। इस संगम पर हर साल मेला लगता है।
6: गोमती आगे बढ़कर दक्षिण पूर्व की ओर वाराणसी और गाजीपुर जिले की विभाजक रेखा बनती है। यहीं बाएं किनारे पर इसका संगम होता है नंद नदी से। संगम से 8 किलोमीटर दूर गोमती अपनी पचरंगी चूनर लहराती हुई गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। यहां मार्कंडेय महादेव का सुविख्यात मंदिर है। यह वही स्थल है जहां राजा देवास ने दूसरी काशी बनानी चाहिए थी।
8: नमामि माता पूर्ण

0: मैं ना पर्वतों से उतरी हूँ ना समुद्र में गिरी हूँ। उत्तर प्रदेश में ही मेरा लय होता है और उत्तर प्रदेश में ही विलय हो जाती हूँ।
1: खीरी जिला गजेटियर के अनुसार नदी के रेतीली मिट्टी के निचले तटों के अलावा कहीं भी गोमती सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है।
2: श्री अनिल स्वरूप ने कहा,
1: अपने पूरे बहाव में गोमती कहीं भी सिंचाई के काम नहीं आती। रेतीली मिट्टी के निचले किनारों पर ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज तथा मौसमी साग सब्जियों की खेती परंपरागत ढंग से की जाती है। सीतापुर पहुंचकर गोमती नदी नावों के उपयोग का अवसर देती है, इसके बाद सीमित रूप से जलमार्ग का काम देती है। जौनपुर के जिला गजेटियर के अनुसार गोमती अपने आकार के बजाय अपने बहाव की लंबाई के लिए उल्लेखनीय है।
0: मैंने प्रगति के पौधों को पानी दिया है और दिया है सारे संसार को प्यार भरा संदेश।
3: गोमती ने जिस पथ को अपना जीवन मार्ग बनाया है, वही पथ इसके गंगा जमुनी चरित्र की पहचान है। गोमती की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सर्वधर्म समन्वय की। इस नदी ने इस महान राष्ट्र के सीने पर चंदन पानी की एक ऐसी लकीर खींची है जिसकी सुगंध ने न केवल देश को वरन सारे संसार को आकर्षित किया है, प्रभावित किया है।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव एक नट का रूप धरकर पर्वतराज हिमवान के यहां गए। देवी पार्वती को दिए वचन के अनुसार हिमवान और मीना से पार्वती का हाथ मांगा। वे दोनों महाप्रभु को नहीं पहचान पाए और बहुत क्रोधित हुए। नारद के अनुरोध पर शिव जी अपने असली रूप में आ गए। हिमवान और मीना सहर्ष शिव पार्वती विवाह के लिए तैयार हो गए। भारी उत्सव के बीच विवाह संपन्न हुआ। महाक्षमादानी देवाधिदेव ने कामदेव को भी पुनः जीवित कर दिया। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी शौनक जी, कैलाश पर कई दिन उत्सव मनाने के पश्चात महादेव और महादेवी प्रणय आनंद उठाने एक मनोरम निर्जन स्थान की ओर चले गए। देवता हाथ जोड़े शिव पुत्र के जन्म की बात जोने लगे।
2: महाभाग सूत जी, शिव पुत्र तथा तारकासुर वध का संदर्भ पहले भी अनेक बार उभरा है। ये तारकासुर कौन था?
1: शौनक जी, पूर्व काल की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के एक पुत्र थे ऋषि कश्यप। दक्षराज ने उन्हें अपनी 13 पुत्रियां ब्याही थी। इनमें दिति और अदिति ऋषि कश्यप की प्रमुख पत्नियां थीं। परंतु दोनों बहनों की प्रकृति एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थी।
2: वो कैसे सूत जी?
1: देवराज इंद्र की माता अदिति अत्यंत धर्मपरायण थी, परंतु उनकी बड़ी बहन दिति बहुत आसुरी स्वभाव की थी। इंद्र को नीचा दिखाने के लिए वो एक अति बलशाली और पराक्रमी पुत्र चाहती थी।
2: तो उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किया सूत जी?
1: कश्यप ऋषि के कहने पर उन्होंने 10,000 वर्ष का घोर तप किया। इससे उन्हें पुत्र रूप में वज्रांग नाम का महाबलशाली दैत्य प्राप्त हुआ। उसने इंद्रलोक जीतकर इंद्रतक को एक स्तंभ से बांध दिया,
2: देवेंद्र को परास्त कर दिया। फिर क्या हुआ सूत जी?
1: परमपिता ब्रह्मा वज्रांग के पास गए, उससे इंद्रदेव को बंधन मुक्त करने को कहा। वज्रांग ने ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए इंद्र को स्वतंत्र कर दिया। इसके पश्चात वज्रांग ने राजपाट त्याग दिया और सतोगुण अपना लिए।
2: परंतु सुना है वज्रांग पत्नी की आकांक्षाएं और आसुरी प्रवृत्ति अपनी सास से भी कहीं अधिक प्रबल थी। उसी ने तारक नामक पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ शौनक जी, तारक ने दैत्य माता दीति और अपनी मां से देवताओं के सर्वनाश के लिए तपस्या की अनुमति मांगी। दोनों ही ने उसे प्रसन्नता पूर्वक परमपिता ब्रह्मा की आराधना की आज्ञा दे दी।
3: हे ब्रह्मदेव, प्रसीद प्रसीद। हे ब्रह्मदेव, प्रसीद प्रसीद। हम जानते थे ब्रह्मदेव कि हमारी तपस्या से प्रसन्न हो आपको हमें दर्शन देने ही होंगे।
4: वज्रांग पुत्र तारक, तुमने ये कैसे समझ लिया कि हमने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हें दर्शन दिए हैं?

0: यही तो आप देवताओं की क्षीणता है। आप किसी की भी भक्ति से प्रसन्न हो तुरंत उसे वरदान देने पहुंच जाते हैं।
1: ब्रह्म भक्त तारक, इसे हमारी क्षीणता नहीं उदारता समझो। अपना अहंकार त्यागो और मनवांछित वर मांगो।
0: मुझे दो वर प्रदान करे ब्रह्मदेव। पहला, कि आपके रचे हुए इस संसार में मुझसे अधिक बलवान और तेजस्वी और कोई ना हो।
1: तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो तारक।
0: दूसरा, मेरी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों ना हो, ना आपके, ना विष्णु के, और ना ही संहारकर्ता शिव के।
1: वज्रांग पुत्र तारक, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे यहां से जाना तो पड़ेगा ही, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं तुम्हें यह वरदान दे भी दूं, तुम मृत्यु का ग्रास तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कहो, कैसी मृत्यु चाहते हो?
0: ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे मात्र शिव का औरस पुत्र ही मार पाएगा।
1: बस इतना सा वरदान? तथास्तु। दिया वज्रांग पुत्र तारक, मैंने तुम्हें ये वरदान दिया।
0: अरे ब्रह्मा, तुम देवता वास्तव में मंदबुद्धि हो। ये जानते हुए कि वो योगी शिव विवाह के बंधन के विरुद्ध है, तुमने मुझे ये वरदान देकर अमर बना दिया है। अमर बना दिया है ब्रह्मा।

0: मैं अमर हो गया। दैत्य माता दिति, गुरु शुक्राचार्य, सुना आपने?
1: हाँ वत्स तारक, मैंने सुना। परंतु इतनी सरलता से उन्होंने ये वरदान दे कैसे दिया? अवश्य ही इसके पीछे कुछ।
2: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको देवताओं के वरदान के पीछे हमेशा कुछ न कुछ बुरा क्या दिखाई देता है? तारक ने घनघोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया है, उसे वांछित वरदान तो मिलना ही था।
1: आप ठीक हो सकती हैं दैत्य माता दिति, परंतु मैं भी देवताओं को भली भांति जानता हूँ। दैत्यों को वरदान देते समय कुछ ना कुछ अपने लिए तो बचा ही रखते हैं। तारक, ब्रह्मा के वरदान से तुम अमर तो हो ही गए हो।
0: मैं तुम्हें संपूर्ण असुर साम्राज्य का राजा घोषित करता हूँ।
3: शुक्राचार्य गुरु,
0: आज से तुम तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गए।
2: पौत्र तारकासुर, आज से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, देवताओं का विनाश।
4: विष्णु हरे, महाप्रभु की इस लीला का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं दे रहा।
5: हाँ विधात, उधर तारकासुर पुनः इंद्रलोक पर आक्रमण की योजना बना रहा है।
4: एक बार तो मैं उसे समझा बुझाकर इंद्रासन त्यागने पर विवश कर चुका हूं। तब वो पृथ्वी के शोणित नगर में जा बसा था, परंतु अब उसमें इतना साहस और अहंकार भर गया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाला।
5: तो हम क्या करें प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें इस संकट से

0: सूर्यदेव संकट निवारक तो मात्र सदाशिव ही हैं, हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा।
1: परंतु ब्रह्मा जी,
0: उनकी प्रणय लीला भंग करना क्या?
2: श्रीहरि,
0: वहां जाकर हम शिव वंदना करेंगे। महाप्रभु अंतर्यामी हैं, हमें आया जान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। चलिए देवतागण, चलिए
3: चलिए।

0: प्रिय ब्रह्मदेव, प्रिय श्री विष्णु, हम आपके यहां आने का प्रयोजन जानते हैं। देवताओं पर आई विपदा का भान है हमें, परंतु हम विवश हैं। पुत्र उत्पत्ति के लिए देवी पार्वती की मनस्थिति अभी उपयुक्त नहीं है, वे सुप्त अवस्था में है।
1: परंतु देवाधिदेव, तारकासुर नामक समस्या का तुरंत निराकरण आवश्यक हो गया है। कितने ही देव पुत्रों को वो निगल गया है। देव माताओं के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह चली है। संपूर्ण त्रिलोकी तारकासुर से त्रस्त है।
2: हे महादेव, अब इस जगत की रक्षा आपके पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। प्रभु, मैं श्री ब्रह्मा और स्वयं आप तारकासुर के समक्ष प्रभावहीन है। महाप्रभु, तारकासुर के अत्याचारों का उत्तर मात्र आपका औरस पुत्र ही दे सकता है, और वो उसका वध करके।
0: विष्णु हरे, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता।
1: महाप्रभु, आप ही विधि हैं, आप ही विधान हैं। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता।
0: अर्थात तारकासुर वध के लिए हमें अपने पुत्र की उत्पत्ति का बीज प्रदान करना ही होगा। जैसी आपकी इच्छा देवताओं।

0: सूर्य देव?
1: हाँ
0: देखिए तो कैसा दिव्य बीज उत्पन्न हुआ है।
1: हाँ इंद्रदेव, इसका तेज और ताप तो मुझसे भी सहस्त्र गुना अधिक है।
0: इसकी उष्णता तो सबको विचलित किए दे रही है।
2: देवतागण लीजिए, पुत्र उत्पत्ति के इस बीज को ग्रहण कीजिए।
0: देवादिदेव, इस उत्तम बीज को धारण करने की क्षमता त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। देवादिदेव, इसे छूते ही व्यक्ति भस्म हो जाएगा।
2: इंद्रदेव, सूर्यदेव, आप सबके आग्रह पर मैंने ये बीज उत्पन्न कर दिया है। किसी न किसी को तो इसे ग्रहण करना ही होगा, ये व्यर्थ नहीं जा सकता।
3: देवाधिदेव, प्रभु देवी गंगा को आदेश दे, वे इस बीज को ग्रहण करें। उनका शीतल जल ही इस बीज के तेज और ताप को सहन कर सकता है।
4: विजया,

0: ये तो अनर्थ होने जा रहा है।
1: हाँ जया, शिवपुत्र प्राप्ति का बीज देवी पार्वती के स्थान पर कोई और ग्रहण करने जा रहा है।
0: हमें शीघ्र ही देवी की तंद्रा भंग करनी होगी।
1: चल शीघ्रता से चल, कहीं विलंब न हो जाए। चल
2: गंगे, देवी गंगे।
3: आज्ञा महादेव।
2: गंगे, इन देवताओं के आग्रह पर आप ये बीज ग्रहण करें। अपने निर्मल पवित्र जल में इसे रख, इसे शिव पुत्र का रूप प्रदान करें।
1: परंतु हे शिव शंकर, इस बीज पर मेरा अधिकार नहीं है।
2: गंगे, नियति ने आपको यह अधिकार सौंपा है। हम ही नियति हैं। शिव पुत्र की उत्पत्ति होनी ही है, यही नियति है गंगे।
4: नियति अर्थात शिवाज्ञा देवी। शिवाज्ञा टाली नहीं जा सकती। प्रभु की इस लोक कल्याणकारी लीला का निमित्त आप बन रही हैं। ये तो आपके लिए बड़े गर्व की बात है।
1: परंतु किसी से उसके मातृत्व का अधिकार छीन लेना गर्व का विषय नहीं होता परमपिता।
4: परंतु गंगे, शिवाज्ञा का पालन करना अवश्य गर्व का विषय है। श्रीहरि सत्य कह रहे हैं गंगे, आपके इस पाप नाशक कार्य से असंख्य प्राणियों का जो उद्धार होगा वो तो और भी बड़े गर्व का विषय है।
1: जैसी सर्वेश्वर की इच्छा। नाथ, लाइए लाइए वो बीज, मैं ग्रहण करूंगी। ये तो भला हो सखी जया और विजया का जो मेरी तंद्रा भंग कर दी। अन्यथा लाइए महाप्रभु, दीजिए। क्या हुआ, आप सब देवतागण चुप क्यों हैं?
2: पार्वती, वो बीज तो हमने देवी गंगा को दे दिया है।
1: क्या ये आपने क्या किया प्राणनाथ? गंगा को? कोई बात नहीं, गंगा मेरी बहन है, मैं अभी जाकर उनसे बीज ले आती हूँ।
2: देवी पार्वती, हम देवता दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं मांगते। इससे दान की महत्ता और दान की हुई वस्तु का प्रभाव मंद हो जाता है। बीज का प्रभाव मंद हो जाने से वो तारका सुर वध करने योग्य शिव पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
1: ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा। अरे देवताओं, आप मेरी तंद्रा भंग होने की प्रतीक्षा तो करते, आपने एक माँ से उसके मातृत्व का अधिकार छीना है, मुझे वंध्या बना डाला। ये अक्षम्य अपराध है, आपको दंड मिलेगा। आज से सभी देवियां पार्वती की ही भांति वंध्या हो जाएं।
2: पार्वती, आपने देवियों को ये कैसा श्राप दे डाला? इसे वापस ले लीजिए।
1: क्षमा करें नाथ, यदि महादेव अपना दान वापस नहीं ले सकते तो महादेवी भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकती। आओ जया, आओ विजया।
5: जी देवी।
6: देवताओं को ये श्राप देकर आपने उचित ही किया महादेवी।
1: हाँ जया, हमारे प्रभु के भोलेपन का लाभ उठाकर जब तब उनसे उचित अनुचित सब करवा लेते हैं।
0: परंतु जया, विजया, हमारे मातृत्व रस को तो उन्होंने सदा के लिए सुखा डाला।
6: देवी पार्वती, आप तो जगत की माँ हैं, माँ का मातृत्व रस कभी नहीं सूखता, क्यों विजया?
1: हाँ जया, देवी पार्वती, हमें विश्वास है कि शिवपुत्र जैसे ही आपकी गोद में आएंगे आप उन्हें अपने मातृत्व जल से भिगो डालेंगी।
0: संभवतः तुम ठीक कह रही हो विजया, मातृत्व ही तो एक स्त्री का बल होता है।
6: आइए देवी, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए।

0: जया जी देवी, तुम चिंतित से इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथ के जलपात्र से जलधार भी भूमि पर ही गिर रही है।
1: देवी, चिंतित तो मैं हूँ। आप स्नान कर रही हैं, यदि कोई आ गया तो?
0: कैसे आएगा, द्वारपाल शिवगण प्रहरी तो हैं।
1: नहीं देवी, द्वार पर कोई प्रहरी नहीं है।
0: ऐसा क्यों विजया?
1: देवी, जब से आपने देवताओं को श्राप दिया है, तभी से सभी शिवगण आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं आप किसी बात पर उन पर क्रोधित न होते। इस भय से वह आपके प्रासाद से ही दूर रहने लगे हैं।
2: पार्वती, देवी पार्वती।
0: अरे, ये तो स्वयं महादेव ही सो आ रहे हैं। जा, उन्हें शीघ्रता से वहीं जाकर रोक जाया। मेरा स्नान भी पूरा नहीं हुआ है।
3: जी देवी, अभी जाती हूँ। रुकिए, तनिक रुकिए महाप्रभु।
2: जया, ये क्या, आप हमें ही भीतर जाने से रोक रही हैं?
3: नहीं महाप्रभु, नहीं। वो बात ये है प्रभु कि देवी पार्वती अभी। देवी पार्वती?
2: कहो जया, शीघ्र कहो। देवी पार्वती, क्या हुआ देवी पार्वती को?
3: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवाधिदेव। देवी पार्वती का स्नान अभी पूर्ण नहीं हुआ प्रभु, इसलिए आप अभी।
2: तो ये बात है, ठीक है। हम देवगणों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, वे सब देवी पार्वती के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। स्नान पूर्ण होने पर हमें सूचित कर देना।
0: जो आज्ञा महादेव।
1: बच गई
0: जया, आज तो तू महादेव के क्रोध से बच गई, परंतु इस प्रकार उन्हें रोककर कब तक बच पाएगी?
4: अरे जया, क्या बड़बड़ाती आ रही है तू?
0: देखा देवी पार्वती, जिस बात का भय था वही हुआ। द्वार पर शिवगण की अनुपस्थिति में स्वयं महादेव अंदर चले आए।
4: अरे सखी जया, अगर द्वार पर शिवगण होते भी तो उनमें महादेव को रोकने का साहस कहाँ होता? वे तो सभी देवाधिदेव के ही गण हैं, उन्हीं की आज्ञा से चलते हैं।
0: कोई भी ऐसा नहीं जिसे हम पार्वती गण कह सके, जो मात्र देवी की आज्ञा माने और महाप्रभु से भी भय न खाए।
4: तो तुम क्या चाहती हो विजया?
0: देवी पार्वती, आप कोई ऐसा बलशाली द्वारपाल नियुक्त करें जो मात्र आपकी आज्ञा माने, ताकि हम अबला नारियां शिव भय से मुक्त हो जाएं।
4: बस इतनी सी बात? लो, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी करती हूँ।
0: देख देख तो जया, देवी अपने शरीर से उत्पन्न मैल से एक पुतला बना रही है।
3: हाँ, अब उस पुतले को भूमि पे रखकर उसके कान में शिव मंत्र फूंक रही है।

0: हाँ विजया, और पुतले ने एक अति प्रभावशाली बालक का रूप ग्रहण कर लिया।
1: बालक के मुख पर देवी पार्वती का तेज चमक रहा है, गौर वर्ण, उन्नत मस्तक, और देख तो जा, बालक की भुजाएं कितनी बलिष्ठ हैं, और विजया देख, ये तो जन्म से ही अति बलशाली दिख रहा है। बालक को देखकर देवी पार्वती के मुखमंडल पर भी कैसे वात्सल्य भाव उमड़ रहे हैं। देख देख, बालक देवी के समक्ष नतमस्तक हो रहा है।
2: प्रणाम माते, मुझे बताएं मैं कौन हूँ?
1: तुमने मुझे माँ कहा है, तो निश्चय ही तुम मेरे पुत्र हुए वत्स।

0: मेरा नाम क्या है माते?
1: पुत्र, तुम पार्वती के एकमात्र गण हो। तुम्हारे पिता शिव मेरे ईश हैं, अतः मैं तुम्हारा नाम गणेश रखती हूँ।
2: उत्तम, अति उत्तम देवी। वैसे भी ये मोहक बालक गणों के ईश्वर ही प्रतीत हो रहे हैं।
1: सखी जया, जा तो भीतर से पुत्र गणेश के लिए सुंदर वस्त्राभूषण तो लेकर आ।
2: अभी लाई देवी।
1: विजया, आज्ञा देवी, सिंदूर तो दे, मैं पुत्र गणेश का शिव तिलक तो कर दूं।
2: ये लीजिए देवी।
1: ये हुआ मेरे पुत्र का तिलक।
2: देवी, ये ले वस्त्राभूषण। आइए पार्वती पुत्र, सजिए संवरिए। आहा, क्या उत्तम छवि के स्वामी हैं बालक गणेश।
1: आओ हमारी गोद में बैठो।
3: जैसी आज्ञा माते।
2: आहा, कैसा मंगलकारी सुखदायक दृश्य है। देवी के नेत्रों से मातृत्व की अश्रुधार बह निकली है। बालक गणेश भी अपनी माता की गोद में निहाल हुए जा रहे हैं।
3: माते,
1: कहो पुत्र,
3: मेरे योग्य कार्य बताएं।
1: पुत्र गणेश, हर बालक का सर्वोच्च कार्य होता है माता की आज्ञा का पालन करना।
3: माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
1: लो पुत्र गणेश, ये दिव्य छड़ी लो। अभी तो तुम मेरे द्वारपाल का कार्यभार संभालो। मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी ना अंदर आने पाए।
3: माते, कोई भी नहीं?
1: हाँ पुत्र, कोई भी नहीं। कोई बलपूर्वक या हठपूर्वक आना चाहे तो इस छड़ी का उपयोग करना, यही तुम्हारा अस्त्र है।
3: जो आज्ञा माते। आप निश्चिंत होकर स्नान करें, मैं द्वार पर जाता हूँ।
4: आहा, महामना श्री गणेश के जन्म का ये प्रसंग सुनकर मन विभोर हो उठा है। पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति हो ही गई।
5: हाँ परम ज्ञानी सूत जी, यही होता है विधि का विधान।
4: महाभाग सूत जी, अब तो प्रभु शिव शंकर के दो पुत्र हो गए, इनमें से तारकासुर विनाशक कौन बना?
5: शौनक जी, इस रहस्य को अगली भेंट तक रहस्य ही रहने दीजिए।
4: जैसी आपकी इच्छा।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज़ सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचा कर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

श्वेत वृषभों पर विराजेला, श्वेत वस्त्रों ने धारण करनारा, महादेव जी ने आनंद अपनारा, ये तेजस्विनी महागौरी देवी हमने शुभ पदार्थों आप। महागौरी ये पार्वती देवी एम कहवाई छे के एक समय महादेव जी पोताना आ अर्धांगना शक्ति नो परिहास विनोद मां करता काली श्यामा एम कहूं। एथी आ देवीए उग्र तपश्चर्या दिव्य आराधना करीने अति गौर श्वेत वर्ण प्राप्त कर, एथी आ महागौरी कहवाय। महागौरी पार्वती जी तथा महादेव परमेश्वर की ये वाणी अने अर्थनी माफक संयोजित छे। इमने वाणी तथा अर्थनी प्राप्ति माटे महाकवि कालिदासे

हे भवानी गौरी, स्मशाननी चितानी भस्मनु आलेपन करणार महादेव, जेरनु विष्णु भोजन करणार दिगंबर, जटाधारी कंठे नागराज वासुकीने हारना रूप में धारण करणार, हस्मा कपाल भिक्षापात्र धारणार भगवान पशुपति महादेव जगदीश ने पदवी पाम्या। हा हा हा, खरेखर ये तो हे परमेश्वरी तमारा पाणी ग्रहण नी परिपाटी योजनानु फल। हे महादेवी, आप अमारा ऊपर प्रसन्न था,

हे गौरी, ज्यांना मस्तके चंद्रशोभिरयोशी ते महादेवजीची सम्मानित थैला, हे गौरी देवी अपने में प्रणाम करगीश। दुसातीश ये गौरी नू भवानी तरीके शंकराचार्य जी देवी अपराध क्षमापन मा स्तोत्र मा सुंदर स्तवन करियुश।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

ಕಗನ ಬರುವಾಯೋ, ಅಂತರ ಕೀರು ಕಗನ ಬರುವಾಯೋ, ಅಪನೀ

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।